0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम, तुम।
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

0: I am very very sorry. I am color blind.
1: क्या?
0: अरे पगली समझी नहीं, मेरी नजर जरा कमजोर है.

0: पुलिस अफसर हो।
1: मौसम बड़ा सुहाना है।
0: अच्छा जी,
1: अब तो समझो किसका एक अफसाना है।
0: अरे बाबा, कितनी बार कहोगे? हाँ,

0: के रखना दोस्त लगा में कसके हर मुश्किल से काबू में आए थोड़ी ढील जो छोड़ी हो
1: Maybe some of you might be surprised. Yes, I was a pastor. I was just about 19 years old.

0: Uma! Uma!
1: बैठ जाइए, बैठ जाइए, खामोश। मैंने एक भूल की, सुबीर कुमार को अकेले गाने का न्योता देखा। क्यों
0: तूने चिट्ठी में लिखा था ना उमा कि सुबीर को फिर से गाना पड़ेगा, क्या वो शुभ दिन तू नहीं देखना चाहती?
1: हाँ बेटी, तुझे गाना ही पड़ेगा, मैं तेरे पिता समान हूँ, मेरा आदेश है। चल चल

0: साड़ी।
1: छोड़ो मेरा हाथ।
0: मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी साड़ी, छोड़ो मेरी साड़ी।
1: पहले मेरा खत वापस करो।
0: क्यों?
1: शर्म नहीं आती दूसरों के प्रेम पत्र पढ़ती हो?
0: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र लिखते हो?
2: You know, I'm a public figure, so I'll tell you the truth for those who are asking. Christina and Letitia, they're two different mothers. Two different moms, but they look alike.

की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों से कोई खेले।